0: अच्छा एक बात बताओ, ये चरस पहले आई या करप्शन?
1: चरस पहले आई।
0: कैसे?
1: सुन, चरस में नशा है, नशे में पावर है, पावर में करप्शन है। कैसी गई?
0: क्या बात है, ब्रिलियंट।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया बिन कोटरावा तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाले हैं सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवेदन फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रहो तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवेदन फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

का मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे ना आना, चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: मुझे तुमसे प्यार है,
1: तुमको हमसे प्यार
0: है। या या या। तुमको हमसे प्यार है ना, जिसे आनंद भी बोल जाइया, जो कोने से तुम्हारी बोल कि हमें तुमसे प्यार है, गया मुझे तुमको प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हुई ही तो विल सेगे गिव इट वेल अ बीच लादिंग है ना, खड़ी बोली के खाओ फाइए मार तनी ओमा भी और कुछ बोलिए तो अलेन मार एक हाफ वन ईयर या हैव वेनिग टूगेवोगे वाडे यू आर उजाला रेडियो के जरिए यहां तक आपने सुने कॉफी चाय मिदा शो। हम आपसे आने वाले दिनों में फिर मिलने वाले हैं उजाला रेडियो पर। मौज रहिए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: Ujala's Sona Chiria.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

खुशी के साथ ही गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और सभी लड़कन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नीखंत खियार और श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली सिंथिया और शकीता की मां जगदीश गोपाल रंजीत असरफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हरकिसुन के सास, 13 लड़कन के नानी और आजी, 19 लड़कन के परनानी और पर आजी, आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन स्त्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, पहले पारामारिबो फ्लामिंगो स्त्रात के निवासी जो थी। आम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और लड़कन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नीखंत खियार औत पति श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली सिंथिया और शकीता की मां जगदीश गोपाल रंजीत असरफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हरकिसुन के सास, 13 लड़कन के नानी और आजी, 19 लड़कन के परनानी और पर आजी, आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन स्त्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, पहले पारामारिबो फ्लामिंगो स्त्रात के निवासी जो थी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक Woens de avond van 6:00 tot 7:30. Uitvaartcentrum Westgaarde, ke familie Aula Hoofd, ke Moerdalij. Ook meerweg Dossau Pachetter, Amsterdam Oostdorp mee. Arthie ke dagkria, aane wale bife ke din mee 3:30. Donderdag aanstaande 3:30 kie jaenge Westgaarde Crematorium, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 06 57 51 45 75। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Hi, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more.
2: Hi, Sheva.
3: Hi.
2: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
4: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
1: डाइटिंग?
2: लगता तो नहीं?
4: Hey!

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

इस देश का बचपन भूलता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

धन्यवाद कहना चाहते हैं यार कि आप जो सुन रहे हो, और अगर आपकी जन्मदिन सालगिरह आज है ना, या तो आने वाले दिनों में विवाह संस्कार शादी होंगे, तो फरमाइश आप दे सकते थे यहाँ उजाला रेडियो पर। मारतीस नो इतला तू जाने है तो बेल करके रिकल कर ले 020-4909-807 en mailtje sturen is sneller. Stuur een mailtje naar info@ujala.nl.

या उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी करते हुए सुनने वालों, अब एक फिल्म से गीत। फिल्म का नाम है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। गाने वाले जावेद अहमद, शारिफ तौशी एंड अरिजीत सिंह।

और हाँ, उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अब अगला गीत फिल्म अग्निपथ से होंगे। अजय अटवाल एंड श्रेया घोषाल से

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ और हाँ, सुरीनाम के सुनने वालों को या जहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस्तकबाल करती हूँ। गीतों का नशा आज सर चढ़ कर बोलेगा। अपने संगीत की खजानों से एक के बाद एक सदाबहार नगमे हमने चुने हैं, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी। शुरू करती हूँ ये दुआ से। खूबसूरत है वो दिल, खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। ऐ मालिक कायनात, सुबह होते ही मेरे प्यारों के दिली मुरादे, तमन्नाएं, ख्वाहिशें, उम्मीदें पूरी फरमा। उनको इज्जत, सेहत, मोहब्बत, रहमत अता फरमा। उनको हर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी से महफूज फरमा।

इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे। उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये दुआ। अब हम ऐसे ही रूहानियत अंदाज में महान शास्त्रीय संगीत का गायक पंडित अजॉय चक्रवर्ती की सुर में मेरा भजन सुनवाते हैं। बोल है, मत जा जोगी, पाऊं परू मैं तेरी।

रोंगटे खड़े हो जाती है ऐसी आवाज से। महान शास्त्रीय संगीत का गायक पंडित अजॉय चक्रवर्ती के सुर में पेश था ये भजन। इसी तरह हमने मजहबी और भक्ति संगीत आपको सुनवाए। नजर अंदाज करने वाले तेरी कोई खता नहीं। मोहब्बत क्या होती है शायद उसे पता नहीं। इसलिए तन्हा हो जाना नजर अंदाज होने से बेहतर है। किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल श्री पंकज उधास की आवाज़ में। कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का, मौसिकी थी आनंद मिलेन की। तकदीर ने जैसे चाहा, तकदीर ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम। बहुत संभल के चले, बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने भरोसा तोड़ा, तो किसी ने दिल और लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हम।

दिल छू लेने वाले गज़ल पेश थी उस्ताद गुलाम अली की आवाज में, कलाम था शायर अनवर मसरूर का। ये जो हालात मेरे, ये जो हालात है मेरे, एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन लेकिन काफ़ी लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा।

स्वर की मालिका लता मंगेशकर से पेश थी ये गज़ल, श्री जगजीत सिंह की मौसिकी थी, कलाम था शायर अहमद फराज का। उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जिसमें आपको कई शैलियों में गीत संगीत सुनने को मिलते हैं। वैसे तो आपको एक के बाद एक खूबसूरत सदाबहार नगमे सुनवाती हूँ, पर कभी कभी बीच बीच में अनसुनी गाने भी सुनवाती हूँ, जैसे कि ये गीत बोल है, भरी भूल हुई तुझे प्यार किया।

सुनहरे दौर का गीत पेश था। संगीत से सवारे थे बुल्लू सी रानी और जिया सिंधी का बोल था। अब क्या मैं आपको सुनाऊं? हाँ, लीजिए मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

सदाबहार दो गाना पेश था, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की। चलो चलो इश्क में नहीं, चाहने की आदत नहीं, पर क्या करे हमें बस तेरी आदत है, और साथ में ये मौसम रंगीन।

एवरग्रीन सॉन्ग पेश था मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, और ये दो गाना प्रदीप कुमार और साइदा खान पर फिल्माया गया था। अब आप दिल थाम कर बैठिए, आ रही है शोला भरकाने और दिल धड़काने, जी हाँ, लता मंगेशकर।

जी हाँ, हो गई ना दिल खुश आज भी। इन गीतों में वही ताजगी है, वही हरियाली है। इसी अंदाज में ये गीत पेश है। आशा भोसले क्या सुनाएंगी अपनी शोखी आवाज में, आइए सुने। और हाँ, साथ में सुर से सुर मिला रहा है किशोर कुमार।

फिल्म बाप रे बाप में से ये गीत लिया है और संगीत से सवारे थे संगीतकार ओपी नैयर। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन के जुबां, आवाज़ है हेमंत कुमार की।

फिल्म आबे हयात का गीत पेश था। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं और ये प्रोग्राम उजाला रेडियो के जरिए आप सुन रहे हैं।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारूफ शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है। हमने कोशिश किया है छोटी रूप में धर्म जी की फिल्मी सफर के बारे में बयान करने को, कैसे थी उनके पर्दे के पीछे की जिंदगी, उस पे हमने जरा सा रोशनी डाला है तो एहसास हुआ कि धर्म जी की निजी जिंदगी हम सब से अलग नहीं था। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र शोहरत की बुलंदियों पर था, लेकिन साथ ही साथ अपने बीवी प्रकाश के साथ बच्चों को जो सभ्यता, संस्कार, तालीम व तरबियत दिए है, पले बड़े हैं, आज भी बरकरार है। धर्म जी की पहली बीवी बच्चों के बारे में इतला तो किया, पर धर्मेंद्र का दूसरा दयाल खानदान भी है और धर्म ने ये फखर से कहा था। पर कब और कैसे धर्म जी की पहली मुलाकात हुई थी अपनी दूसरी बीवी से, पहले एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

नजर में हमने अपना दिल दिया था तुमको। फिल्म द बर्निंग ट्रेन का गीत पेश था और ये जुगल गीत धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और प्रवीण बाबी पर फिल्माया गया था। धर्मेंद्र जी को अपना खानदान, मतलब बीवी बच्चे होने के बावजूद उसने दोबारा शादी किया था अदाकारा हेमा मालिनी के साथ नेहतीन तख्तक में, और इन दोनों को दो बेटियां हुई, ऐशा और अहाना दियो। धर्मेंद्र कहा कि इस हकीकत पर खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने दोनों घरों को संभाल सकता था, दोनों खानदान को खुश रख सकता था। पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी फिल्म शराफत, फिर तुम हसी मैं जवान और नया जमाना। इन तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म थे। आवाम इन फिल्मों को पसंद किया और ख़ास करके इन फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। हेमा मालिनी ने कहा कि आवाम हम दोनों की जोड़ी फिल्मों में पसंद किया था। तीनों फिल्में सुपरहिट फिल्में थी, पर वो महसूस किया था कि ये ना सिर्फ फिल्मी की मोहब्बत थी बल्कि मोहब्बत की शुरुआत का एक हकीकत जोड़ा था। शुरू में मैं उसे सिर्फ पसंद करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। हाँ, धर्मेंद्र को बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उनकी पहली मुलाकात इससे कितने साल पहले हो चुकी थी। कब और कहाँ पहली बार मिले थे, एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म शराफत में से ये गीत पेश था। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक साथ पहली फिल्म थी, पर इन दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मुझे अब्बास की फिल्म आसमान महल की प्रीमियर में शामिल होने की दावत मिला था। मैंने अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर के लिए दस्तखत की थी। मेरे साथ थी मेरी मम्मी। सब मेहमानों के बीच खड़े थे शशि कपूर और धर्मेंद्र, और जब उन्होंने मुझे देखा तो पंजाबी में मुस्कुराते कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। ये हेमा मालिनी ने कहा था। फिर उन्हें उनके सामने राज कपूर की ड्रीम गर्ल के तौर पर तारीफ कराया गया। फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें राज कपूर के साथ काम किया था और अवाम उस फिल्म को पसंद किया। उसके बाद हमने कई और अदाकारों के साथ काम किया। हेमा जी ने कहा, मुझे धर्म जी के साथ काम करने की इंतज़ार रहता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं किया। हेमा जी ने कहा कि नेखती फैफ सिर्फ तक हम दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किया। एक सैनिक के लिए धर्म जी कई बार रिटेक कराते थे, खास करके जब प्यार भरे सैनिक होते थे। धर्म जी हेमा के साथ शूटिंग पर आने के बहाने ढूंढते थे, तब भी जब उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम आपको फिल्म नया जमाना में से एक गीत सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो हेमा जी पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म में थे हेमा के साथ धर्मेंद्र।

हेमा ने कहा कि इतनी सालों बाद वक्त के साथ साथ वो खुद धर्म जी की तरफ खींचती गई। वो जज्बा एहसास अंदर से महसूस कर रही थी और कहा हेमा ने, आखिरकार अपने मुस्तकबिल के शौहर का तसव्वुर बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे ही किया था, बस फर्क ये था कि वो गैर शादीशुदा हो। लोग अब हेमा के और धर्मेंद्र के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, अफवाहें थे। इसके वजह से घर में तनाव था, वो उलझन में थी और कहा हेमा ने, ये तो तकदीर और मेरा नसीब था। वो अपने वालदैन पर नाराज थी इसलिए क्योंकि माँ बाप एक मुनासिब खुशखिक्त लड़का तलाश करने की जुनून जो था। लड़का चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन या अदाकार, धर्मेंद्र ने अपने जिद पर कायम था। वो हेमा जी से शादी करना चाहा। हेमा ने कहा कि हम दोनों एक साथ कई फिल्में बनाए, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान हफ्तों महीने देश विदेश में साथ थे। और फिर ये एक आदत बन गई कि हम हर वक्त एक साथ रहते थे। घर में तनाव स्पानिंगन था और कहा कि फैसला जो वो अब लेंगे इससे माँ बाप खुश नहीं होंगे। फिर एक दिन हेमा ने धर्म जी को फ़ोन किया और कहा कि मुझसे अभी शादी कर लो। ये लफ्ज़ सुनने के लिए धर्म जी बेताब था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया शादी करने को, पर अफवाहें थे कि दोनों ने शादी करने के लिए पहले इस्लाम मज़हब को कबूल किया था। लेकिन धर्म जी और हेमा ने हमेशा इस इल्ज़ाम को इनकार किया और कहा कि पार्लियामेंट की मेंबर्स की हैसियत से ये दोनों के खिलाफ एक सियासी चाल थी। इन दोनों की शादी अयंगर तौर तरीके से हुई थी। धर्म जी की तरफ से सिर्फ उनके वालिद था। शादी के मौके पर धर्म ने एक वेश्ती साउथ इंडियन रिवायती लिबास पहना हुआ था। पंडित प्रधान ने कहा कि तकरीब औकफेर अयंगर रिवायत के मुताबिक की गई थी और कहा पंडित प्रधान ने कि शादी का दिन त्वे मै नेहन तख्तख में था। ये शादी इंतहाई निजी यानी प्रिफे मामला थी और ये शादी हेमा के भाई के घर में हुई थी। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने उनकी शादी में मौजूद नहीं थी। माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। कहा गया कि धर्म पहले ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर से शादी कर चुकी थी और उसे कानूनी तौर पर तलाक नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने हेमा जी के शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। हेमा की माँ से जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्यों वो शादी में शिरकत नहीं की, तो उसने कहा कि ये शादी तामील की रीत और रिवाज की मुताबिक नहीं हुई थी और वो चाहती थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करे। कहानी दिलचस्प है, पहले एक गीत सुनवाते हैं।

फिल्म रजिया सुल्तान में से ये नगमा पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। इस नगमा से पहले आपने सुना कि शूना लिस्टन जब हेमा की माँ से सवाल किए कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों थी, तो माँ जया चक्रवर्ती ने कहा, कई वजह थी। धर्म जी शादीशुदा था, 4 बच्चों का बाप और मेरी उम्र का था। मैगजीन वाले ने लिखे कि शादी के दिन धर्मेंद्र अपनी बीवी हेमा को 2 हीरे की अंगूठी दिया था और उसके वालिद अपने नई नवेली बहू को 1 साड़ी दी थी। हेमा ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने बहुत पहले ही उसे जहनी तौर पर दिल और दिमाग से अपना जीवन साथी बना लिया था और ये रीत और रस्में सेरेमोनी सिर्फ हमारे परिवारों को खुशी करने के लिए थी। यहाँ तक के धर्म मुझे 1 अयंगर मंगलसूत्र भी दिया था। कुछ सालों बाद हेमा जी अपने बेटियों ऐशा और अहाना के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी किसी दूसरे खानदान से मुकाबला नहीं करती थी, और कहा हेमा ने, मैंने मोहब्बत की है, बदले में उनसे कुछ मांगा नहीं। धर्म अभी भी अपने पहली बीवी प्रकाश और बच्चों का ख्याल रखता है और वो हमेशा अपनी बेटियों ऐशा, अहाना और मेरे लिए मौजूद रहते हैं। बच्चे जब अपने वालदैन के बारे में हकीकत जाना तो उन्हें एतराज नहीं हुआ। ऐशा दियोल अपनी किताब में लिखा कि अगर मेरी माँ ने 1 अयंगर से शादी की होती तो आज वो सिर्फ 1 घरेलू बीवी होती। हेमा ने कहा कि घर के कुछ कायदे कानून था, ऐशा और अहाना दोनों को शलवार कमीज पहननी थी और जीन्स पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, शॉर्ट्स या तंग लिबास भी मना था। धर्म जी कुछ बातों के बारे में संजीदा सीरियस था। वो एक क्लासिक पंजाबी बाप था, लेकिन आज़ाद ख्याल हेमा की बदौलत धर्म जी खुद बदलने लगा। उसने मेरी किसी क्लासिकल डांस में शिरकत नहीं थी। एक बार मेरे डांस देखने के बाद धर्म जी मुझसे कहा, आप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जैसे आपका ताल्लुक मुझसे नहीं है। अब मैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस मंच पर कभी भी नहीं देखेंगे, और कहा धर्म ने, बच्चों को डांस मत सिखाना। पर हेमा की जिद थी, वो अपनी बेटियों को क्लासिकल डांस सिखाई, लेकिन उन्हें देखने के बाद धर्म ने अपना इरादा बदल लिया। हेमा ने कहा कि ये उसका कसूर नहीं था कि उसने ऐसी सोच ऐसे ख्याल रखा था। फिर धर्म ने अपने बेटियों ऐशा और अहाना से कहा, मम्मी की जैसे करो डांस। डांस तो ठीक है, पर फिल्मों की तरफ एक्ट्रेस बनने का ख्याल इसके बारे में सोचना ना कभी, इसके इजाज़त नहीं मिलेंगे। आगे क्या होता है, धर्मेंद्र अपने बेटियों को एक्ट्रेस बनने की इजाज़त देंगे या नहीं, अगले प्रोग्राम में बयां करेंगे। अब इस जुगल गीत के साथ इस हिस्से का प्रोग्राम फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ।

आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र साहब के बारे में बयां किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये ड्यूएट।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में। मोहब्बत भरे अंदाज में लुत्फ उठाइए इस नगमा से।

नादिर कपूर की शहद भरी आवाज में पेश था ये नगमा। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाता है। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसीलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं।

कहानी किस्मत की दिल छू लेने वाली नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज़ में। अब आइए सुने अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिन, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे, रात अधूरी।

फिल्म मृत्यु दंत का नगमा पेश था महान शायर जावेद अख्तर का कलाम था मौसिकी आनंद मिलेन की, आवाजी थी कुमार सानू और साधना सरगम की। समय तो धीरे धीरे चल मिलकर सुनाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार।

समय तो धीरे धीरे चल, अमर गीत आपने अभी सुना। संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन और गीत रचना राज कवि तुलसी का। कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं।

शोखियाँ नजर में है, शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा लक्ष्मीकंद प्यारेलाल की मौसिकी और आनंद बख्शी का कलाम था। अकेले जीने की आदत तो पहले से थी, लेकिन न जाने क्यों आजकल तन्हाई महसूस हो रही है।

राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत में पेश था ये नगमा बोल था आनंद बख्शी का। मैं जिस दिन देख लूं तुमको मुझे महसूस होता है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते।

फिल्म आशिक में से ये गीत पेश था। संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे और शायर शैलेंद्र का गीत रचना था। रोमानी अंदाज में आइए सुने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा।

दो प्यार मेरा खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज और संगीत से सवारे थे से रामचंद्र। इसी रोमानी अंदाज में अगला नगमा पेश है आशा भोसले की आवाज़ में।

फिल्म उमंग का नगमा आपने अभी आशा भोसले से सुना। गीतकार अनजान का तर्ज, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनने वाले ये प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

नगमा पेश था तलत महमूद की आवाज में। अब आइए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहिब से ये दो गाना।

फिल्म पारस मनी से ये दो गाना लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कलाम था असद भोपाली का, संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुने मुकेश से अगला गीत।

और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

ताकत जमी ताकत आली ताकत जमी ताकत झाला आमचं ताकत जगी ताकत आली गे नाही ताकत नाक ताकत जमी ताकत नाक नाक जमी ताकत नाक नाक जमी ताकत नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेटे ताकत तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेटे जम तारी

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है DAB+ तो घर में तो रो तुम्हें तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो